शरे गज के बोलो भला हो जाएगा। जेड़े घरां विच बैठे हो भी बोलो भला हुंदा जे शब्द नाल, सुवास सफल हो जांदा जे प्यार विच आखो सतनाम श्री वाहिगुरु।

जीवन दे कल्याण कर सकता है। और साडा जिहड़ा मात लोक जन्म होया है केवल गुरु की बाणी वास्ते, शब्द की विचार वास्ते, जीवन नूं सवारन वास्ते ही।

आई है अपने भाणे अंदर सुख दी बतीत करवाउणी, अमृत वेले दे जागणे, नाम दान इशनान दृढ़ करवाउणा। आप जी के हजूर पंचामृत कड़ा प्रसाद हाजर है, दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो। दर आई संगत दियां हाजरियां पिटावां दर प्रवान करनियां, शुभ मनोकामनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां। पढ़ी बाणी कथा कीर्तन वारां दा भाव समूह स्रोता जना दे हिरदियां ते वसाउणा, समूह वक्ता जना नूं इसे तरह अपनी सिफत सलाह दा बाल बुद्धि उद्दम चाओ बख्शना। समूह परिवारां अंदर आपसी प्यार इतफाक सुख शांति तंदरुस्तियां बख्शनियां, बच्चियां नूं दीर्घ आयु गुरसिखी जीवन उच्च विद्या दा दान, माता पिता ते वडेरियां दी शुभ आग्या पालन दी समत बख्शनी, कारोबारां विच वाधे करने किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणियां। कृपा करो इलाही हुक्म दी दात बख्श के नदरी नदर निहाल करो, हुक्मनामे दे उपदेश मुताबक सुचजी जीवन जाच बख्शनी। सेई प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया भई अकाल की तभी चलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की, जो प्रभु को मिलबो चहै खोज शब्द में, राज करेगा खालसा आकी, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो। वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे, जो

भिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखहु सरनाई सोकहु टल गुर सेविया अहनिस सहज दर्शन परसया गुरु कै।

नमो सर्व सुखंग नमो सर्व भोखंग नमो सर्व करता नमो सर्व हरता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयालय नमो सर्व पालय चाचरी संत त्वय प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अप...

तिरवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमी कैर भीक है, अतंद है, बंद है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजहा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अजम है।

नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रिंग नमो सर्व मंत्रिंग नमो सर्व जंतरंग नमो सर्व दरे सिंह नमो सर्व करे सिंह नमो सर्व रंगे तिरभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजै अखिजै अपिजै समस्तं प्रसिजै कृपालिंग स्वरूपे को कर्मणंग परनासी सदा सर्वधारिद सिद्धंग निवासी। चरपट छंद तै प्रसाद अमृत करमे अमृत धर्मे अकल जोगे अचल पोगे अचल राज अटल साजे अखलंग धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग आता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद त्वै प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजो

अकर से भगवती चंद त्वै प्रचाद के आच जदेसे के आप जपेसे के आगंज कर्मे के आपंज भरमे के आप जलोके के आदित सोके के अविदूत बरने के विभूत करने के राजसंग प्रभा है के धर्म तुजा है के अशोक बरने के

अनेकल तरंग है, अभेद है, अभंग है, अजीज निवाज है, गनी मुल्क राज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, पर

कामे तिर पर गंग तरबादे अगंजे अगाते सो भंग सर्वागे सो सर्वा अनुरागे तेरे भगत रूप है अचज अछूत है कि नरकंग प्रणास है प्रतिउल प्रवास है निरुक्त पुरब है सदेवंग सदा है विभुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभ है अनुक्त स्वरूप है पर जुगत अनूप है। चाचरी छंद तै प्रसाद अपंग है अन

परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूप निर्बाध विभूते अनंगी अनामे तिरभंगी तिरकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसांकंग श्री कै अमितो अमी कै सदेवंग प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत है प्रसाद के जार जूर है के हाजर हजूर है हमेशा सलाम है समसुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसन चराग है।

अपंगी सरूपे अनंगी अनामे तेर पंगी तेर काले अनंगी अकामे। एक श्री चंद अजे अले अपे अबे अपू अजु अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल लेख पेख नाम काम गाढ़ा नाथे परमाथे जूनी मुनी रा रागे नरंगे नरूपे नरेके अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेख पुजंग पर्या ते चंद

मस्तल परमाने समस्तल परनासे अगंजल नामे समस्तल निवासे निरकामिंग बिभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग बिभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजैब विभूते जैव गिनी में हरियंकरियंकरी मूल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भोगते सुमांब सर्ब सर्वदा सर्ब जोगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुमंबम सर्व सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बिपूते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तह प्रचार सवई है सुरावक शुद्ध समूह सदान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सरार्दन शुद्ध सदातक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपाओं ते एक रति बिनेक रति के माते मतांग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तरंक रंग से कूदत पौन के गौण को जात निवारे भारी पुजान के भूपली विद्यावशीष न जात बचारे इत पाए तो कह पाए भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत परे सब देश दसान को बाजर ढोल मृदंग नगारे गूंजत गूड़ गजान के सुंदर हिस्सती अहराज हमारे भूत भवेक भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बेचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सुधारे तीर्थ नान दया दम दाम सो संजम नेम अनेक बसेखे भेद पुराण किते पुराण जमीन जमान समान के पेखे पौन आर जति जत तार सब सोभ चार हजार देखे श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बन एक न लेखे शुद्ध सुभा दुरंत दवा सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी मान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन मातम तंगन मान मलेंगे श्री पग पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार अपचारे सार की तार पिछैया तोरत दिस मलिंद मवासन मातक जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ हार सो पातन ही चक चार लोइया सब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव निंदन साचर भूत भवेक पुहान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल में पाली पल में साब थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जाए तुन पापन गे बुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फेरे सा सत्तर सबे अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातम जौन तो त्रिलोक राज करेंगे कोट स्नान गजाद गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म बेचर बिचन सची पत अंत फसे।

कहां पयो जो दो लूचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फिर अलो सा समुंदर लो गए पर लोक गवायो बास की ओ मख्यान सो

अंतर्गत होके सत्संग जी नाम सुनना करना जियो, जिन्हां गुरमुखां नूं नाम नहीं सुनदा उन्हां ने अंतर्गत होके सास ग्रास संबंध विच ध्यान रखना जियो। स्वास अंदर नूं जांदा वाहे फील करना, स्वास बाहर नूं आउंदा गुरु फील करना। जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे आ उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जियो। कृपा करके नेत्र बंद रखने जियो।

शर्म धर्म का डेरा दूर नानक उड़ रहा भरपूर मथे टिका तीड़ धोती तो खाई हाथ श्री जगत कसा।

संगत जी, सारी संगत माई भाई गुरसिख, सज बैठे हो आओ आदि गुरु ग्रंथ साहब जी नूं प्यार विच भिज के सीस चुका के दोनों हाथ जोड़ के गुरु फतेह बुलाओ जी। रसना द्वारे सारे आख्या

प्यारा बोल जे, सारी संगत ध्यान दे दियो। जो इच्छा छछा छछे नु दलाइया छै इच्छा है, जो इच्छा हुण जिन्ने बैठे हैं साडे अंदर कोई ना कोई इच्छा चल रही है, चल रही है। साहब जी कहिंदे जो चाहुंदा है ना इच्छा है वो मिल जाता है, पर किवें? साध संगत नाल मिलाप दा सदका। साडे कोल एक प्रमाण है सौखा जिहा, श्री मान भाई गुरदास साहब जी ने उस पौड़ी नूं कलम बंद कीता है, चेता रखियो संगत विच कीती हुई अरदास संगत दी वह मेरे सतगुरां दे दर ते प्रवान हुंदी है, इच्छावां पूरियां हुंदियां ने। जिस वेले सुख राजे हरी चंद घर नार सो तारा लोचन राणी, तारा राणी जिहड़ी धर्म पत्नी है राजे दी, हरी चंद राजे दी रब दे प्यार वाली भगतरी है, संगत विच जांदी है। एक दिन सुभाव की होया, भावें तुसां ने बोल बड़ी बार सुने हुण पर बाणी कदे पुरानी नहीं हुंदी, जिवें जिवें बाणी दुबारा दुबारा पढ़ोगे तिवें तिवें आनंद आउंदा है। एक दिन राजे नूं जाग आई, वेखदा है राणी मेरे बिस्तर ते नजर नहीं आ रही, मन अंदर शंके पैदा हो गए। सुभाविक है ना, जदों धर्म पत्नी नजर ना आवे अंदर शंके पैदा हो गए, मूह तो कुछ बोलिया ना। कहिंदा अगले दिन देखदा मैं किधर जांदी मुकदी गल करा। अगला दिन आया है, राणी जिथे रब दियां प्यार वालियां बख्शियां रूहां बैठियां होईयां ने आ तुहाडे वर्गियां। सत संगत करन वाले कदम कदम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जपदी जपदी संगत विच आके चौकड़ा मार के ते जपन लग पी सतनाम श्री। राजे ने चलाकी कर ली, राजे ने चलाकी खेड ली। चलाकी की खेडी, अपनी धर्म सुपत्नी दा जोड़ा जेड़ा है उहदी एक जोड़ा जेड़ा है, सज्जे खब्बे दे दो ने, एक जोड़ा जेड़ा है खड़ां जेड़ी है चप्पल जेड़ी है शू जेड़ा है वह चक के लै गया। उसदे मन च यह शंका पैदा होया, मैं उहनूं डांटांगा तू रात कित्थे गई सी, जे तू गई सी ते एक तेरा जोड़ा कित्थे नजर नहीं आ रहा, तू भुल गई है किहो किहो जे बोल अंदर चेते आ रहे, आके लुका लिया। पर रब दी प्यार वाली उह बख्शी हुई बीबा जदों शू घर विच जांदी है जोड़ा नजर नहीं आउंदा। हुण उधर भी पति है, एक पासे पति परमात्मा है ते उस वेले संगत तों अरदास कराउंदी है। आ ते छोटी जी मामूली जी गल है, मेरे पैर दा जोड़ा पूरे दा पूरा हो जे, ते जदों अरदास कीती रब दी ऐसी कुदरत होई देखिया तिवें पूरे ने। राणी तुरी आ रही है, ये करामातां दी गल नहीं हुंदी, ये गुरु दी वडियाई वरतदी है। जे कहीए ना भी करामात नहीं करामात नहीं, करामात तो बिना दुनिया सुधरदी भी कित्थे जे, कितें सुधरदी है कितें दुनिया, ये कितें ना कितें सतगुरु जी नूं कृपा करनी पै जांदी है। जिस वेले वेख्या राजे ने वह भी उत्थे पूरा पिया है, उस वेले पुछदा कारण की है, ते राणी ने बोल ए कहे सी ए ते मामूली जी जोड़े दी बात है, जदों संगत अरदास कर देवे ते सारे पाप कटे जांदे ने, ते सच खंड दी इच्छा रखण वाले नूं दुनिया दियां इच्छावां तां पिछे रह गईयां, ओह भी इच्छा पूरी हो जांदी है। ਉਹ ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਸੁਖ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਘਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸੁਖ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਘਰ ਨਾਰ ਸੁਤਾਰਾ ਲੋਚਣ ਰਾਣੀ,

नजर ना आई, मन विच वरत गई हैरानी। हैरान अगला दिन होर तराती, अगली रात होर तराती उठ के चलिया पिछे तरुण जवानी। नौजवान धर्म पत्नी दे पिछे तुर पिया ते राणी किथे आ गई है, राणी पहुती पप्पा हा हा हाहे नूं औंकड़ तत्ता तत्ते नूं बिहारी पहुंच गई पहुती किथे संगती। ते राजे ने की कीता, राजे खड़ी खड़ाओ निशानी। फिर की होया जी, जो इच्छा है साध संगत आराध्या। संगत ने करती अरदास, साध संगत आराध्या, जोड़ी जोड़ी खड़ाओ पुराणी। कमाल होगी जे वेखो, जोड़ी जोड़ी खड़ाओ पुराणी, पुराणी पुराणी जड़ी ओदे कोल सी तीवां दी, थोड़ा जिन्ना भी फर्क नहीं है, कमाल होगी है। जोड़ी जोड़ी खड़ाओ पुराणी। राजे डिठा, राजे ने वेखिया चलत एहो, ए चर्च कौतक जदों राजे ने वेखिया उतो रिहा ना गया, ते आप मुहारे बोल बोले, राजे डिठा चलत एहो, कहिंदा राणी ए खड़ाव है चोज विडाणी। कमाल है, इतों मैं सदके जावा, ओ भी एदा दी, ते किथे दो सी, हुण दो दीआं तिन बण गईआं ने। आखो सतनाम श्री। राजे डिठा चलत एहो, ए खड़ाव है चोज वडाणी, साध संगत विटों कुर्बानी। संगत तो कुर्बान कुर्बान जाइए। आओ समाप्ति वाले आइए, साहब जी कृपा करदे ने, जो इच्छा सोई फल पावै, साध का सांगना बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साध संगत करदिया मेरा पार ब्रह्म वाहिगुरु हिरदे विच वस जांदा है, ते नाम जपदिया जपदिया रसना द्वारे रस आउंदा है। आओ लयो रस, कोई रसना वांझी ना रिहा करो, गज के बोलिया करो, संगिया ना करो। मैनूं पता है असी संगन की साड़ी आदत है, गल्लां विच संगन की आदत नहीं आ, पर वाहिगुरु शब्द बोलन वेले संगन की आदत। वो संग बाहर छड आया करो, बाहर छड के ते रज के बोलिया करो, गज के बोलिया करो।

गुरु मुख देख गुरु सुख पायो सम्रथ गुरु सिर हथ धरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो निसबसर एक समान तिहान सो नाम सुने सोत पहान डरियो भन दास सुहास जगतर गुरु की पारस भेट परस करियो रामदास रामदास गुरु हर सत कियो समर्थ गुरु सिर हथ धरियो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की।

गन का पढ़त पूरे तेह का जिसरी सतगुर सो परसन कल जुग होए राखो दास पाठ की लाज जेह सतगुर सिमरंथ नैन के तिमर मिटै खिन जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जेह सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नाव निध पावे सोई राम दास गुर बल भन मिल संगत धन धन करो जेह सतगुर लग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरहो नरहो हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शाड बिख बिख माया मोह परम सुत दारा स्यों

रहतावे चरणा है कुराता तो बचना है कट्टो घट थोड़े तो थोड़ा सत बाणियां दा नितनेम होना ता जरूरी है। पातशाह जी कहते पुछ लिया है शक भी लिया है अमृत की दात लै भी ली है पर जे नहीं किया कुछ भी तो क्लास चेंज कदे नहीं। एक गल चेता रखो जो अमृत छकना है ना जी बहुत जरूरी है पर यह ना सोच लियो भी अज ही अमृत छक के ते गुरु तक पहुंच जावांगे पहली क्लास विच दाखला है ये दाखला है। दाखला बच्चा होवेगा दाखल स्कूल विच ते पढ़ाई तो ता ही होवेगी ना सिर्फ यह दाखला है ते अगली पढ़ाई तो फिर जिवें जिवें नितनेम करता जाएगा वधाउंदा जाएगा जीवन विच तब्दीली आउंदी जाएगी उन्ना ही मिलता जाएगा। मैं तो कई बार हैरान भी हो जाता पहला बंदा ठीक हुंदा जिदन गुरु का अमृत छक के निम्रता विच आउणा सी ना उदन कहिंदा मेरे वर्गा उदन कथावाचकां नूं भी आउंदिआं सार लड़ाई झगड़ा पा देगा मैनूं इदां दे भी मिल जांदे ने कहिंदा बस इन्हां नूं तां कुछ आउंदा नहीं मैनूं ही सब कुछ आउंदा इदां दे भी संसार विच है। उन्हां दी बात पता कैसी हुंदी है हर जस सुणे ना हर गुण गाव है बातन ही असमान गिराव है ऐसे लोगन स्यों क्या कही है जो प्रभ की ये भगते बहाज तिण ते सदा डराने रही है आप न देह चुरू पर पानी तह निंदा जह गंगा आनी उठत बैठत कुटिलता चल है आप गए और नु कल है छाड़ को चर्चा आन ना जन है ब्रह्मा हो को कहो ना मान है आप गए और नु खोवे आग लगाए मंदिर में सोवे अवर्ण हसत आप है काने तिनको देख कबीर लजाने पूछत फतक ते मार्ग ना तारे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए पूछत वैद खात औखद ना संजम से कैसे मिटे रोग सुख सहज समाई है पूछत सुहागण कर्म है वाहिगुरु कर्म है दुहागण कह दुहागणी क्या निशानिया दुहागणी क्या निशानिया निशानिया दुहागणा दिया निशानियां की है बाणी का बोल जे मारे पता की आंदे ने दुहागणी क्या निशानिया खसमो कुथिया खसमो कुथिया फिर है निमाणिया ये निशानियां ने उन्हां दियां पूछत सुहागण कर्म है दुहागण कै हृदय भी विचार कत सेजा बुलाइए वाहिगुरु गाए सुने आखे मीचे पखंड दे विच पाईए ना परम पद गुर उपदेश गह जौ लौ ना कमाईए जिन्ना चिर गुरु दे शब्द दी कमाई नहीं कीती जांदी आओ प्यार विच दो चार मिनट करिए कमाई वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु गज के बोलो थोड़ा खुल के बोलो भैणा वालों भी आवाज आवे होर खुल के प्यार विच सारे बोलो

तिस गुर को ध्यान दियो। तुसां ने गुरु का जाप किया है, सतगुरु जी दे अमृत बचन है जी। तिस गुर को सिमराओ सास सास, फिर अर्ज करा तिस गुर को सिमरो सास सास। गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी, गुर का दर्शन देख देख, गुर के चरण गुर की रेण नित मज्जन करो। एक हुंदा जी स्नान करना, एक हुंदा मज्जन है, तो वह भी स्नान का वाचक है, पर मज्जन का अर्थ वक्रा बन जाना। इशनान का तो पानी पा लिया जी सीधा मज्जन। तुसी गुरु रामदास जी के घर जाते हो ना, ज्योति जो समाउन दा दिहाड़ा, ते जदों सरोवर च कई प्यारे गुरसिख इशनान करते हैं, तुम देखो ना कई बार सिर ते छोटी जी केसकी बद्धी होंदी है जां दस्तार, नंगा सिर नहीं रखते, एकदम अपने नक नूं घुट के पूरा चुब्बा मार लेना, उन्हू कहिंदे मज्जन, उन्हू कहिंदे ने मज्जन। मज्जन भाव चुब्बे मारने, चुब्बे गुर की रेण नित मज्जन करो, चुब्बियां मारिए शब्द विच आनंद, गुर की रेनत मज्जन करो। की होवेगा जन्म, जन्म की हो मैं मल हरो, एक जन्म नहीं नेकां जन्मां दी, जिवें स्नान करन दे नाल मज्जन करन दे नाल मैल लै जाएगी। जन्म जन्म की हो मैं मल हरो, तिस गुर कहो चोला हो पाखा महा अगण ते हाथ दे राखा। तिस गुर कह ग्रह ढोवो पानी जिस गुर ते अकलगत जानी। तिस गुर कै गृह पीसो नीत जिस प्रसाद वैरी सब मीत। जिन गुर मौ को दीना जियो अपना दासरा आपे मुल लियो। ये ते सतगुरु तेरी वड्याई है, आपे लायो अपना प्यार, ये तुहाडी वड्याई रहमत है, आपे लायो अपना प्यार। सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार, कल कलेश पै भ्रम दुख लाथा। वेखो नमस्कार करदे आ, कलयुग दे कलेश पै डर भरम दुख सारी लै गए, कल कलेश पै भ्रम दुख लाथा। कहो नानक मेरा गुर समरथ, समरथ गुरु दी पावन हजूरी अंदर सज बैठे हो बहुत ही प्यार विच। सतगुरु जी दा जिथे अमृत बाणी दा तुसाने कीर्तन सरवण कीता सी, उत्थे नाल दी नाल तहन गुरु रामदास महाराज जी दी वड्याई, गुरु अर्जन देव महाराज सचे पातशाह जी दी वड्याई, भाई गुरदास साहब जी दा कबित जिहड़ा है सांझ पाई है, यही कबित सी तुहानू मूल पाठ च सरवण करवा दें। जैसे एक चीटी पाछे कोट, चीटी चल जात है एक टक डग मग आगे सावधान है। जैसे कुंज पांत भली पांत उड़त आकाश चारी आगे अगवान है। जैसे मृग माल चाल चलत टलत नाए जतर कतर अगर पागी हमें तत ध्यान है। चीटी खग मृग सनमुख पाछे लागे जाहे प्राणी गुर पंथ छाड़ चलत अज्ञान है। उस्ताद जी जदों कबित कंठ करवाउंदे सी ना, एक एक दिन च
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਚ ਸੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਟਕਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਸੁਰਤ ਟਿੱਕੀ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेलै प्रभु हर दरगह का बसीठ।

प्रभु सतगुर पुरख मिलाया बलराम जीओ निरपौ पहे मन होए होमे मैल गवाया बलराम जीओ निर्मल भाव पाया हर गुण गाया

स्वामी सर्बरहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाभ चलाए अनहद शब्द बजाए जन नानक दूजी लाभ चलाई अनहद

मन चौ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वड भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वड भागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर धुन उपजी हर जपिया मस्तक भाग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै

आया अन दिन हर लेव लाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी वाधाई हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदा नाम विगासी जन नानक बोलै चौथी लावै हर पाया प्रभ अवनासी हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदा नाम विगासी जन नानक बोलै चौथी लावै हर पाया प्रभ अवनासी।

0: बख्शी खुशियां खेले, हाँ बख्शी खुशियां खेले, हाँ बख्शी खुशियां खेले।
1: अज बाबल तेरे महिला विचो तेरी धी परदेसन होई, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबल, असा उड़ जाना धी ने सहुरे घर जाना। और आस करदे आ कि धी दे सहुरे घर तो हर आने वाला हवा दा बुला सरदार गुरदयाल सिंह जी उन्हां दे परिवार नूं इह सुनेहा देवे कि तुहाडी धी अपने सहुरे घर दे विच राज करदी है। सो सतगुरु कृपा करन इह खुशियां भरिया माहौल, इसे तरह इह बच्चे खुशियां दे नाल अपनी जिंदगी बसर करन। तो ढाडी जत्थे नूं बुलाओ, फतेह गुरु प्यारिओ, ढाडी जत्था तकरीबन 14-15 दिन तो तुहाडे इस गुरु घर दे विच सेवावां निभा रहा। मेरे इस पासे सज्जे पासे जस्सी सिंह हमीदी बरनाले दे लागे इस बच्चे दा नगर है, किस्मत सिंह बीला इह वी बरनाले तो आ, ते नाल दे दास दे सरंगी मास्टर भाई रणजीत सिंह लखा, यह जगरावां दे लागे इन्हां दा लखा नगर है, ते दास ज्ञानी बलबीर सिंह बिहारीपुर वाले रेल कोच फैक्टरी कपूरथले दे लागे मेरा नगर है। सो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
2: यह सन गुरु घर दा ढाडी जत्था ज्ञानी भाई बलबीर सिंह जी बिहारीपुर वाले, जिन्हां ने विआह दे संबंध विच कविता सरवण कराई है, तिन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद परिवारां वल्लों। हुण विआह दी समागमां दी इत्थे समाप्ति है, कड़ा प्रसाद दी देग वरताई जा रही है, लंगर जिहड़ा है तुसीं थले लंगर हाल दे विच छकना है, अते जो सगन है मेन हाल दे विच लड़के दे माता पिता ने ही पाउणा है, बाकी संगत ने इत्थे सगन नहीं पाउणा, यह बेनती रूप प्रवान करनी। दूसरी बेनती, आपां सारिआं ने गुरु साहिब दा सत्कार करना है, गल्लां नहीं करनियां, गुरु साहिब हाजर नाजर हन, प्रगट गुरां की देह हन, सुपली जरूर बेनती प्रवान करनी। हुण समा ढाडी वारां दा है, नाल आपां ढाडी वारां वी सरवण करनियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा,

जिन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले त्रिपता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गूजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवह उदम, जा आहर हर जियो परिया। सैल पत्थर मह जंतो पाए, ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया।

जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी, से मुक्त भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका भौ सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी।

सिमरत सासत जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे कर है सोई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता।

सेवक सिख सभै करतार, मोर अच्छा निज करदे करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आशा,

पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा अरंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उतभुज खान बहुर रच दीनी कहू फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो।

अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे है गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों झटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहद साहो, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिलंग महला चौथा। हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां,

उस तत है जो हर प्रभ पावै, जो गुरमुख प्यारा सेम दे तिन हर फल पावै, जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिना जी प्रभ नाले। ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम संभाले, जिन गुरमुख